0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरी लाइफ।
1: खुशी को खबर, विगत चार दशक देखि बुटवल में निरंतर सेवा दिदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिल वस्तु को चार नंबर जितपुर में यही श्रावण चार गते देखि शुभारंभ भई संचालन में आइरहेको छ।
2: शुभारंभ को अवसर में विशेष छूट। थप जानकारी का लागि आले डेन्टल बाढ़गंगा एक जितपुर कपिल वस्तु एड्रेस बैंक नजिक।

0: लिटे
1: एंसल पैक किन लिटे
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लिटे कैश फिर तक ले लिटे
2: एंसल पैक किन लिटे शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: पेंसिल पैक किन लीटे जहिया पेन जहाँ पेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एनसेल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लीटे
0: एनसेल पैक किन लीटे शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग

0: लसुन का पटिया किनारा लगल गटिया ये मुर्साली मैया लगाई
1: तो मही पता बा
0: पता बा चोलो जाए ना छे लसुन ससुन पने ना काम छोरो
1: मही लास लठा मही ना जेठू ना छे
0: जाई
1: मही ना जेठू का
0: चोलो जाई का
1: जाई ना होता
0: जाई
1: चोलो तो जाई।

हो का लुफ तुहार ससुरारी हमार मैया प्रेम में आगिल बाबा हारी और तो विश्वास लागल

0: लसुन का पटिया किनारा लागल गटिया नेमर साली मैया लगाई
1: तो जिसके तो मैं पता
0: बा तो चोलो जाए ना छेरा लसुन ससुन पने ना काम छोरो
1: मैं लास लठा मैंने जेठु ना छेरा
0: जाई
1: मैंने जेठु का
0: चोलो जाएगा
1: जाई ना होता
0: जाई
1: चोलो तो जाई।

0: कि जीवन जीना जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: युनाइटेड अस्पताल बाढ़गंगा चार ठाकुरापुर कपिल वस्तु में बिरामी का लागि थप नया सुविधा
2: कंसल्टेंट फिजिशियन डाक्टर गोविंद रावत छाती तथा श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या मुटु रोग मृगौला रोग पेट र आंद्रा को समस्या कलेजो थायराइड र मधुमेह सहित का रोग पूर्ण परामर्श र उपचार
1: हार्ट जोन

0: बग्ने समस्याको उपचार, बाँझोपन, पाठेघरको क्यान्सरको जाँच तथा परामर्श।
1: वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा।
2: अन्य ओपिडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ।
3: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु। सम्पर्क 076-550-200, मोबाइल नम्बर 98-570-55-138।
1: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।

0: पेंसिल पैक किलिटे जलिया पेन जहां पेन पैक खरीद करी कॉपी प्रति छप्पन कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक किलिटे
0: एंसिल पैक किलिटे शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग

0: बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज मा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: तपाईको गाउँ शहरमा हुन गइरहेका तीजसँग सम्बन्धित प्रतियोगिता तथा कार्यक्रमहरू टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालबाट विश्वभर प्रसारण गर्न सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजलाई सम्झनुहोस्।
1: सम्पर्कका लागि सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज, बागेङ्गा नगरपालिका 4 गजेहेडा कपिल बस्ती, फोन नम्बर 98570-51181, 98570-50757, 98470-12919।
2: वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना एसएससीडी सामुदायिक अपाङ्गता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बाणगंगा नगरपालिका आठ जितपुर कपिलवस्तुको संचालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको 25 वार्षिक साधारण सभा निम्न मिति समय र स्थानमा आयोजना हुन गइरहेको बेहोरा सम्पूर्ण आदरणीय शेयर सदस्य ज्यूहरूमा जानकारी गराइन्छ। अत सम्पूर्ण शेयर सदस्य ज्यूहरूलाई पत्र पठाइएको जानकारी गराउँदछौ। कारणवश पत्र प्राप्त नभए यसै सूचनालाई आधार माने निर्धारित मिति समय र स्थानमा अनिवार्य रूपमा उपस्थिति भई साधारण सभालाई सफल बनाउन सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। सभा हुने विवरण मिति 2083 भदौ 14 गते आइतबार, समय बिहान ठिक 11 बजे, स्थान पञ्जाबी तड्का एन्ड पार्टी प्यालेस, बाणगंगा नगरपालिका 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु। संस्थाको कार्यालयदेखि करिब 50 मिटर उत्तरतर्फ 4 नम्बर तौलिहवा रोड। अनुरोधक श्री सामुदायिक अपाङ्गता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार कपिलवस्तु।
3: ए रजनी, ऊ वही लंबा डंडा है, जल्दी लेके आओ तो।
4: अरे ये मुर्गी का दाना देख समय पर आप कहे डंडा खोजा जाता है?
3: एक ठू सांप है मुर्गी के फार्म लगे, ओका डंडा से डरवाई के भगावे के पड़ा, जल्दी लाओ ना।
4: अरे सांप का नहीं चला चाहिए ना, नहीं तो हमरे इनका डस सकत है, रह दिया जाए, बल्कि घर भीतर आए तो भगाव खोई।
3: रजनी फार्म में हल्के मुर्गी मार दे और खाई ले, यही नाते भगावे के चाहत रहे।
4: फार्म में कीड़ा मकोड़ा मूस सांप न हले कह के तार जारी लगाए हन, सांप मुर्गी के नुकसान नहीं करी, बल्कि आप खाना डसी ले दूर रह जाए।
3: ए सही कहे, का करें सांप देख के बाद डर लग जाते है। अरे सांप तो लौट के बेहवा के और चले गवा।
4: हमरे घर नाई सपन से डेरावा जाते है, ओनरियो हमरे से डेरात है, यदि केहू जान अनजान में चलावत के प्रतिरक्षा करे के या आपन बचाव करे के खातिर सांप डसत है।
5: सांप से दूर रहा जाए, सांप का न चलावा जाए या न चिढ़ावा जाए, सांप आदमी से डरात है, न चलाई के दूर रहे पर सांप न ही डसी, लेकिन उस सब खाना के खोजी में बाहरे निकला समय पर घास काटत के खेलत के चलत के छुई गए पर आदमी आक्रमण करत है, सोच के प्रतिरक्षा करे के क्रम में सांप डसत है, आदमी सांप देखते भरे में मारे लागत है, ऐसन करत के सांप डस लेत है।
6: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय जानकारी के खातिर और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebite.nepal.org में देख सका जाता है।
7: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
0: होइन ए दाई, कता हो लखर लखर बाइक डोराउँदै?
8: कहाँ हुनु र भाइ, यो बाइक बनाउँदा बनाउँदा हैरान परे म त, आज पनि अफिस जाने बेला बिग्रियो, नयाँ किनौ भने पुरै पैसा छैन।
0: चिन्ता लिनु पर्दैन, बिग्रेको बनाउन होस् या नयाँ बाइक लिन, केदारनाथ अटोमोबाइल्स प्रणाली छँदैछ नि, त्यहाँ त जेनुन पार्ट्सको प्रयोग गरी
7: उनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
0: होइन ए दाई, कता हो लखर लखर बाइक डोराउँदै?
8: कहाँ हुनु र भाइ, यो बाइक बनाउँदा बनाउँदा हैरान परे म त, आज

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: उह, ये यूनाइटेड